0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ए गान्टे मुला,
2: किन पर्छे?
1: मलाई ट्याक्सी भनिदेऊ न।
2: तिमी हेर्दै ट्रक जस्ती छौ।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो। ए काम धोई काम मैदान। यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: एनएलजीको इच्छा।
1: एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी, केन्द्रीय कार्यालय पानी पोखरी काठमाडौँ।
2: Extremes and every day, extremes and every day.

0: कॉमेडी कैप्सूल
1: सात नजर बराबर एक मुस्कान, सात मुस्कान बराबर एक भेंट, एक भेंट बराबर एक किस, एक किस बराबर एक प्रपोज, सात प्रपोज बराबर एक विवाह, एक विवाह बराबर 7,777 समस्या।
0: कॉमेडी कैप्सूल
2: ऑडियो ऑडियो एक काम दो काम मैदान, इसमें छ मजा
3: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: संस्कृत शिक्षकले सोध्नु भयो, तमसोमा ज्योतिर्गमय यसको अर्थ के हो? तब विद्यार्थीले भन्नु भयो, तुम सो जाओ मा, मैं ज्योति का घर जा रहा हूँ।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एक कान दुई कान मैदान, इसमें छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: तिमी हाँसिरौ, मेरो मैयाको उत्तम विचार, तिमी हाँसिरौ, नाचिरौ, मुस्कुराइरौ, सधैँ खिलखिलाइरौ। कति उत्तम विचार, तिमी हाँसिरौ, नाचिरौ, मुस्कुराइरौ, सधैँ खिलखिलाइरौ, गुनगुनाइरौ, मेरो के जान्छ यार, तिमीलाई सबैले पागल भन्छ।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एडियो ऑडियो
3: एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ए गान्टी बुला,
2: किन फर्सी
1: त्यस्तो रक्सी खाने मान्छे कसरी छोड्यो?
2: पुरै बत्तल सकाएर छोडे नि।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: एडियो एडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: मैले यो हाम्रो समाजलाई कहिल्यै बुझ्न सकिन। केटीहरूले चाहिँ छोटो लगाए मोडर्न, अनि लामो लगाए फेसन रे, अनि हामी केटाहरूले चाहिँ छोटो लगाए भाइको, अनि लामो लगाए चाहिँ दाइको रे। कोइ तरिका हो?
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एडियो ऑडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी कैप्सूल।
1: एक हुल इन्डियन कलेजका केटीहरू आन्दोलनमा निस्के, साथमा आधा जस्तो केटा थिए। केटीहरूले नारा लाए, हमारी मागे। केटाहरूले भने, सिन्दूर से भरो।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो। एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ए गान्टे मुला सुन न,
0: भन न फारसी।
1: ऊ त्यो क्लिनिक अगाडि जहिले पनि एउटा मान्छे यतिखेर केटी हेरेर बसिरहेको हुन्छ, किन होला?
0: ल तिमीलाई त्यति कुरा पनि थाहा छैन? ऊ त्यहाँ साइन बोर्ड हेर त, ल त्यहाँ के लेख्या छ?
1: के लेख्या छ?
0: महिलालाई हेर्ने समय 10 बजेपछि मात्र।
2: कमेडी क्याप्सुल।
3: एडियो ऑडियो। एक काम दो काम मैदान, इसमें छ मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: एकजना साथीले भन्यो, भर्खर भर्खर लभ परेको यार, क्या मनमा पनि कुछ कुछ होता है। मैले भने, हो सुरु सुरुमा लभ पर्दा चाहिँ कुछ कुछ होता है, बिहे पछि चाहिँ किच किच होता है।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: हाँस्नु कि रुनु, बेरोजगार भएर होला कि लोभी पनि यतिसम्म भयो कि फ्रुटी खाँदा पनि चार पाँच चोटि टर टर नपारी बट्टा फाल्ने मन लाग्दैन।
0: कमेडी क्याप्सुल
2: अडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: तिमी हाँसिरहौ, मेरो मुइयाको उत्तम विचार, तिमी हाँसिरहौ, नाचिरहौ, मुस्कुराइरहौ, सधैँ खिलखिलाइरहौ। कति उत्तम विचार, तिमी हाँसिरहौ, नाचिरहौ, मुस्कुराइरहौ, सधैँ खिलखिलाइरहौ, गुनगुनाइरहौ, मेरो के जान्छ यार, तिमीलाई सबैले पागल भन्छ।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: एडियो ऑडियो
0: एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: त आजकल किन स्कुल जाँदैनस् हो नाति?
2: आ हजुर बा, राम्रो विद्यार्थी चाहिए, घरमा लिन आइहाल्छन्।
0: कमेडी क्याप्सुल
3: एडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: यदि तिमी रमाइलो चाहन्छौ मेरा नाम जक्कर, वाह। यदि तिमी साथी चाहन्छौ हम तुम्हारे है सनम, वाह। यदि तिमी मलाई चाहन्छौ मैं हूं ना, वाह। यदि तिमी सहयोग चाहन्छौ हम साथ साथ है, वाह। यदि तिमी पैसा चाहन्छौ हम आपके है कौन।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो
3: एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: ए गान्टी मुला,
2: किन फर्सी?
1: के तिमी मलाई अरू भन्दा साच्चै माया गर्छौ?
2: एकदमै हो, 100% हो ल।
1: कसरी?
2: मैले हिजो राति सबै लिस्ट हेरिसके।
0: कमेडी क्याप्सुल।
3: अडियो अडियो। एक कान दुई कान मैदान। यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल
1: सात नजर बराबर एक मुस्कान, सात मुस्कान बराबर एक भेंट, एक भेंट बराबर एक किस, एक किस बराबर एक प्रपोज, सात प्रपोज बराबर एक विवाह, एक विवाह बराबर 7,777 समस्या।
0: कॉमेडी कैप्सूल
2: ऑडियो ऑडियो एक कान दो कान मैदान, इसमें छ मजा
3: फुल टाइम कॉमेडी।

मात्र पुग्छ, न केही चताना बैन केहीको डरा। एकान दुई कान मैदान भयो चारैतिर, एकान दुई कान मैदान भयो चारैतिर। देशकै स्वादिलो रेडियो, रेडियो अडियो, एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मज्जा। पाक मुख खानु जस्तो ए हजुर, एकपल्ट रेडियो

0: तमेरी क्याप्सुल
1: संस्कृत शिक्षकले सोध्नु भयो, तमसोमा ज्योतिर्गमय यसको अर्थ के हो? तब विद्यार्थीले भन्नु भयो, तुम सो जाओ मा, मैं ज्योति का घर जा रहा हूँ।
0: तमेरी क्याप्सुल
2: अडियो अडियो
3: एक काम दुई काम मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल।
1: तिमीलाई के थाहा गम के हुन्छ? दुःखको बारेमा होला। तिमीलाई के थाहा गम के हुन्छ? तिमीले गम कहिले जाने छौ? छैन छैन, तिमी त गमबाट धेरै टाढा छौ। हो, तिमीले त सधैँ फेभिकोल प्रयोग गर्छौ।
0: कमेडी क्याप्सुल।
2: अडियो अडियो
3: एकान्दैकान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कमेडी।

0: कॉमेडी कैप्सूल।
1: एक हुल इन्डियन कलेज का केटीहरू आन्दोलनमा निस्के, साथमा आधा जस्तो केटा थिए। केटीहरूले नारा लाए, हमारी मागे। केटाहरूले भने, सिन्दूर से भरो।
0: कॉमेडी कैप्सूल।
2: अडियो अडियो।
3: एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
4: फुल टाइम कॉमेडी।

0: कमेडी क्याप्सुल
1: गीत पनि मास्टर साहेब सिकाइदेऊ पिरती पिरती रे। ए बाबा, मास्टरले पिरती सिकाउन थाले भने कोर्स चाहिँ कसरी सक्नु?
0: कमेडी क्याप्सुल
2: अडियो अडियो एक कान दुई कान मैदान, यसमै छ मजा।
3: फुल टाइम कमेडी।